शहर न्यू रेडियो पालनपुर 90.4 FM रेडियो पालनपुर ट्यून रहो मस्त रहो सांभलता रहो।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा ग्रहों में हम उज्ज्वला गैस पहुंच चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं हटा होगा, तब कितना कष्ट हटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार अपना घर मिलता तो उदारात्मक सम्मान बढ़ जाता, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बनाइए अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का अभियान है।
1: 12 साल विश्वास के विकास जन कल्याण के।

0: मोदी हर परिवार घर में बिजली बनाता है, बिजली बेचनी
1: कमाई कमाई
0: साधन देना चाहता है।
2: भारत ना प्रधान प्रारंभ
3: करोड़ों परिवारों ने।

0: आपको पता है,
1: जो सब जो सपना कुछ देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं,
0: वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं।
1: बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर
0: सेना में स्थाई कमीशन तक,
1: ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक,
0: भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी मां बहनों का गर्व,
3: उनका योगदान, सामर्थ्य
2: आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक मिल रहा है 5 लाख तक इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: जमीन घर गहने या दूसरा सामान बीमारी के बीच में बिकने है गिरवी से बचा है ये आयुष्मान भारत बहुत बड़ी
0: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।

युवक विष्णु प्रभाव के गर्व गौरव ये छोड़ी दो तेवू कहे छे। नागराज अने साधन छो तो साधन रहो तमे। त्यारे नागराज जवाब आपे छे, उद्दंड थता जुओ छो विप्रवर्म तमने मारा जहेरनी तीव्रतानो अणसार नथी लागतो। एक बिंदु पण जीवने पृथ्वी लोक छोड़वा विवश करी दे त्यां तमे शू करशो। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे एआर ना स्वरमां सौम्य तेजस्वीनी पुस्तकना अंशोने। युवक जवाब आपे छे, नागराज हूँ पण धन्वंतरीनो शिष्य छु। धन्वंतरीए चींधेल औषधना प्रभावनो अणसार तमने पण नथी। गमे तेवा झेरनुं मारण अहींना औषधमां छे। अलम दर्पेण, नागराज हवे गुस्सामां आवी गया हता। पोताना प्रभावनी शक्तिने अवगणतो आ युवक तेमने उद्दंड लागतो हतो। तेमणे विचार्युं, आ युवकने मारा विष प्रभावना दर्शन करावा ज पड़शे। हे मूर्ख, शुं समझे छे? तक्षकने ए बोल्यो तो पछी विप्रवर्य मारे तमने मारा विष्णु प्रभाव तो बतावो ज पड़शे। मारा औषध प्रयोगनो आ प्रयोग पण तमे जोई लो। आ जुओ विशाळ वटवृक्ष ऊभू छे एम तक्षक कहे छे। चैतन्य सभर एना मूळमां हूँ मात्र एक दंश दईने अने वृक्ष ने मारण करीने मरणना शरण करी दईश। युवक कहे, जोईए त्यारे, ए पण जोई लईए। तक्षके घनघोर वटवृक्षना मूळ आगळ एक दंश दीधो अने तरत ज वृक्षना पांदड़ा पीड़ा पड़ी गया। शाखाओ ढीली पड़ी गई। वटवृक्ष निमेश मात्रामां मृत्यु गामी थयुं। नागराज बोल्या, जोयुं? विष आ तो प्रकृतिनुं प्रिय संतान, अमर्याद एनो जीवन काल। मारा विष्णु प्रभाव जोयो के केटली क्षणमां एना आत्मा यमसदने पहोंच्या। नागराजना कथनमां भारो भार अहंकारनो रणको हतो पण सौम्य युवक जवाब आपे छे, थोबो, नागराज मृत्युनो निश्चय करवामां उतावळ न करो। तमारो विष अमोक छे पण वटवृक्षना मृत्युना हजू समय आव्यो होय तेवा कोई अणसार नथी। तमे अनुज्ञा आपो तो आ औषधनो प्रयोग करूं। शु युवक प्रयोग करशे, सफळ थशे? માણીશું વિરામ બાદ। ત્યાં સુધી મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો ને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: રામાની જગ્યા

0: ऐसे देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: आ योजना थी तमारू घर साक्षा अर्थमा सूर्य घर बनी जैसे एटले के लाइट बिल साव जीरो। इतलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु विजली पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मा वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी बिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
4: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
4: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
4: जी।
3: तो आज
4: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
4: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
4: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
4: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
4: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
4: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
4: जी। बताती हूँ श्रोताओं लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
4: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। जी जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
4: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
4: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
4: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
4: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान

0: की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: है। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
0: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है।
2: चलो

0: बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
0: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
0: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
1: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी अब पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है। और इडुक्की के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, पर अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है
5: जी।
4: तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।
8: વાઘ અને યાત્રી। એક દિવસ એક વૃદ્ધ વાઘ જંગલમાં કાદવ ભરેલા તળાવની નજીકથી પસાર થતો હતો, ત્યારે તેની નજર એક સોનાની બંગડી ઉપર પડી।
9: ચાલો આ રાખી લઉં છું, કઈ કામ આવશે। દેખાડવા માટે લાલચ તો મળી, હવે શિકારની રાહ જોઉં છું।
8: એ જ સમયે એક યાત્રી તળાવના બીજા કિનારાથી પસાર થતો હતો।

0: पांजरा एक लंबो कुत को लगा भी ने एकदम ऊपर पहुंच ही गयो।
1: केम माने मारवानी योजना बनाओ तो हतो? अरे मूर्ख, अरे पोता नु कालजू बार काढ़ी ने कोई जीव तू रही सके? चल जा अहिया थी अने पोतानी पत्नी ने कही देजे के मारू कालजू खावू एटलू सेलू नथी।
0: सार, बुद्धिमानी अने सावधानी थी कोई पण संकट ने मात आपी शकाय छे।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतो एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।
1: अभी अलविदा मत कहो।

अक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे सांभाळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: और अभी हमारी लड़की में
1: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: डक साबुन का कमाल है ये, और क्या।
0: अच्छा वो आपका
1: हो गया।
0: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डालनी होती है तब क्यों कछुओं की तरह गर्दन आगे कर देते?
1: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था न

0: पिताजी, असल में मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्हीं को ढूंढ रहे हैं।
2: अरे बाप रे, अरे बाप रे। हस्ती अच्छा है। वैसे मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती हैं, शर्मीली।
1: काकी इधर आओ।
2: काकी?
1: ये सीधी भी है और शर्मीली भी।
3: नमस्कार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्या पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो पालनपुर पर तमारी वात ने पहुंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9512-96-88 9512-99-66-88 ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 9512-96-88 9512-99-66-88 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो 90.4 FM रेडियो पालनपुर।

0: आई गो।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: એવું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ. આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના.
1: મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સ્વસ્થ રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM.
2: IAS अधिकारी ने सिर्फ पेंट की मदद से घरों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया. चेन्नई में बढ़ती गर्मी ने गरीब और छोटे घरों की जिंदगी मुश्किल कर दी. छतें दिन भर धूप सोख लेती और रात तक कमरे तंदूर जैसे गर्म हो जाते. एसी तो दूर, कूलर चलाने का बिजली का बिल भी कई परिवारों की बस की बात नहीं था. तब IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने सोचा, समस्या ऊपर है तो समाधान भी ऊपर ही होगा, छत पर. तमिलनाडु के अर्बन हीट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने शुरू किया कूल रूफ इनिशिएटिव. योजना बेहद सरल थी. छतों पर लगाया गया एक खास सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट जो धूप को सोखने के बजाय वापस लौटा देता है. लेकिन हजारों घरों की छतें पेंट करवाना आसान नहीं था. लोगों ने कहा, छतें तो सालों से ही ऐसी हैं, अब क्यों पेंट करें. फिर भी सुप्रिया ने हार नहीं मानी. लोकल मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई. धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस मुहिम से जुड़ गया और जब गर्मी आई तो नतीजे चौंकाने वाले थे. कई घरों के अंदर तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम हो गया. जो कमरे पहले दम घोट देते थे अब रहने लायक हो गए. दोपहर की गर्मी में बुजुर्ग भी आराम से सोने लगे. इसी पहल के लिए IAS सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ओर से दिया गया. IAS सुप्रिया साहू की ये पहल सिखाती है कि कभी कभी जलवायु संकट का समाधान बहुत बड़ा नहीं होता. कभी कभी बस पेंट की एक परत पूरे शहर की गर्मी कम कर सकती है. सोचिए अगर हर शहर ऐसा करे तो कितना फर्क पड़ेगा.
1: મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સ્વસ્થ રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM.

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 एफएम।
1: जब बाकी राज्य युद्ध में उलझे थे तब भारत की एक रानी सड़कें, मंदिर और रोजगार बना रही थी।
2: भेड़ बकरी चराने वाली एक साधारण सी लड़की से भारत की सबसे महान रानी बनने तक ये कहानी है अहिल्या बाई होलकर की, जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि भारत का इतिहास बदल दिया। इमेजिन कीजिए 1700 का भारत, जहां औरतों को पढ़ाना भी गलत माना जाता था। उसी दौर में महाराष्ट्र में जन्मी अहिल्या बाई के किसान पिता मनकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को पढ़ना और लिखना सिखाया, समाज की परवाह किए बिना जीना सिखाया, और यही थी इतिहास की नींव। एक दिन मराठा साम्राज्य के सरदार मल्हारराव होलकर ने गांव से गुजरते हुए अहिल्या को देखा। सिर्फ 8 साल की उम्र और आंखों में आत्मविश्वास की चमक, उसी पल उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। राजमहल आकर अहिल्या बाई ने प्रशासन सीखना शुरू किया, राज्य कैसे चलता है, जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं। तभी एक युद्ध के दौरान उनके पति खांडे राव की मृत्यु हो गई। समाज ने कहा पति के बिना औरत का क्या जीवन, सती हो जाओ, लेकिन अहिल्या ने साहस के साथ मालवा की गद्दी संभाली। उन्होंने लोगों का भरोसा जीता और उनके लिए सड़कें, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। भारत भर में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे 12,000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। महेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय हथकरघा की शान है। उनके राज्य में बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की कमाई 75 लाख से बढ़कर 125 करोड़ तक पहुंच गई थी।
1: विकास की नई परिभाषा लिखने वाली अहिल्या बाई होलकर की कहानी।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 एफएम।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
3: सिविक सेंस की बात करते हैं, यहाँ पे 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए।
4: जीरो सिविक सेंस। अब ये देखिए, मिजोरम के ये यात्री अपना कचरा खुद बैग में भरते हुए, पूरा डिब्बा साफ, फर्श पर एक भी टुकड़ा नहीं, एक ही ट्रेन, एक ही देश, पर सोच पूरी अलग। तो आखिर इस फर्क का राज क्या है? एक शब्द, तोलम गायना, मतलब खुद से पहले दूसरों के

0: बारे में सोच रहा। इसी सोच की वजह से आइजोल को साइलेंट सिटी कहा जाता है, जहाँ हॉर्न कम बजते हैं, लाल बत्ती कोई नहीं तोड़ता, लोग लेन में चलते हैं, जब कोई सड़क पार करता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, सड़कें साफ हैं, लोग अपना कचरा खुद उठाते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सभ्यता कोई बड़ी बात नहीं, ये आदत है। और इधर नया चार्जिंग पोर्ट लगते ही कुछ ही घंटों में कूड़ेदान बन जाता है। मिजोरम में भरोसा इतना है कि कई दुकानों में दुकानदार तक नहीं होते, जो चाहिए उठाओ और ईमानदारी से पैसे रख दो, क्योंकि उन्हें बचपन से बेहतर बनना सिखाया जाता है। बियाटे हर शनिवार सुबह स्कूल के बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर अपनी अपनी गलियों की सफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ कचरा किसी और का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ हम में से ज्यादातर लोग मैं पहले में जीते हैं, वहाँ मिजोरम चुपचाप मैं बाद में को जीता है। रात 3 बजे लैंडस्लाइड हटाना हो या किसी पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देना, यहाँ कोई पीछे नहीं छूटता। छोटा सा राज्य पर बहुत बड़ा सबक, क्योंकि सिविक सेंस सड़कें नहीं बनाती, चरित्र बनाता है। देश बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। सवाल ये नहीं कि मिजोरम ऐसा क्यों है, सवाल ये है क्या हम भी ऐसे बनना चाहते हैं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: दादी पोता और 70 साल पुराना एक मिट्टी का घर नानीचो वाड़ो कोंकण के एक छोटे से गांव की ये कहानी है अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने की। सिंधुदुर्ग जिले के पांगरड़ गांव के स्मितेश 6ठी क्लास के बाद ही अपने गांव से दूर मुंबई चले गए। वहीं पले बड़े और नौकरी भी की, लेकिन सालों के बाद भी सोशल मीडिया पर कोंकण के खूबसूरत वीडियो देखकर उन्हें अपने गांव की याद आती जिसे वह कहीं पीछे छोड़ आए थे। बस फिर क्या था, उसी याद को ताजा करने वह कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके 70 साल पुराने मिट्टी के घर की देखभाल उनकी दादी सुनंदा तांबे अकेले ही कर रही है। आज भी वो घर की जमीन लेपती है, सारे त्योहार मनाती है और सादगी से जीती है। यह सब देख स्मितेश ने ठान लिया कि उन्हें भी इसी तरह से जीवन जीना है और शहरी लोगों को कोंकणी संस्कृति से रूबरू करवाना है। इसके लिए स्मितेश ने सबसे पहले अपना कैमरा बेचकर इस घर की मरम्मत करवाई, मिट्टी की दीवारों पर नए छप्पर डालकर उस घर को फिर से जिंदा कर दिया और खोल दिए इसके दरवाजे मेहमानों के लिए, जहां लोग गांव का पारंपरिक जीवन, दादी के हाथों का स्वादिष्ट कोंकणी खाना, त्योहार की रौनक, देसी पेड़ पौधे और पक्षी देखने आने लगे। यहाँ उन्हें ट्रेकिंग और योगा का अनुभव भी मिलता है। यहाँ आने वाले मेहमान यही के जीवन में और दादी पोते की इस सुंदर कहानी में घुल मिल जाते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी उनकी कहानी तो इस बार छुट्टियों में नानीचो वाड़ो जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 1200 सूखे बोरवेल्स को एक अधिकारी ने बना दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मिलिए IAS प्रताप एम से। तमिलनाडु के विरुधनगर के एक किसान परिवार में जन्मे प्रताप बचपन से ही पानी की हर एक बूंद की कीमत समझते थे। सालों बाद जब वे तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर बने तब उन्होंने देखा कि जिले में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई कुएं सूख चुके थे लेकिन दूसरी ओर हर मानसून में सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता। लाखों लीटर पानी नालियों में बहकर बेकार चला जाता। तभी उनकी नज़र जिले में मौजूद हजारों बंद और बेकार पड़े बोरवेल्स पर गई। उन्होंने सोचा क्यों ना सूखे बोरवेल्स को फिर से पानी बचाने के काम में लाया जाए। न कोई महंगी तकनीक, न कोई बड़ा बांध, बस एक सरल और समझदारी भरा विचार। उनकी पहल से 1200 से अधिक सूखे बोरवेल्स को रेन रिचार्ज स्ट्रक्चर में बदल दिया गया ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर जाकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके। और पहले ही मानसून के बाद पहल से शानदार नतीजे मिले। कई इलाके में भूजल स्तर 5 से 10 फीट तक बढ़ गया। सूखे कुओं में फिर से पानी आने लगा। हैंडपंप दोबारा से चलने लगे। किसानों को अपनी फसल के लिए पानी मिलने लगा और जो गांव कभी पानी के टैंकरों पर निर्भर थे वहां के कुओं में फिर से पानी लौटने लगा। जिन बोरवेल्स को लोग बेकार समझ चुके थे अब वही पूरे इलाके की जीवन रेखा बन गए। IAS प्रताप की यह पहल याद दिलाती है कि हर समाधान नया होना जरूरी नहीं। कई बार जवाब उन्हीं चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत के दूसरे शहरों में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मेघालय का ये वर्ल्ड फेमस रूट ब्रिज बस एक 10 साल के बच्चे की सोच का नतीजा है। पहली बार जब 10 साल के थे तब उन्होंने देखा कि तेज बारिश के दिनों में उनका पूरा गांव नदी से कट जाता था। समस्या बड़ी थी लेकिन समाधान उन्हें मिला दादी नानी की उन कहानियों में जहां पेड़ों की जड़ों से पुल बनते थे। बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर जिसमें ना तो मशीनें थी ना इंजीनियरिंग की डिग्री। हेली ने रबर ट्री की जड़ों को बांस और लकड़ी के सहारे मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें जोड़ते गए। ये एक दो दिन का काम नहीं था, 20-30 साल की मेहनत लगी। जैसे जैसे हेली बड़े होते गए वैसे वैसे पुल भी बड़ा और मजबूत होता गया। आज हेली 69 साल के हैं और उनका बनाया लिविंग रूट ब्रिज हर साल 10,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मेघालय की खासी और वार जनजातियों की जिंदा विरासत है। साल 2022 में यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और अब 23 साल के मॉर्निंग स्टार होंग थॉ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जड़ों से सिर्फ पुल ही नहीं झूले, बैठने की जगह और टनल भी बनाई जा सकती है। हेली वॉर और मॉर्निंग स्टार का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक गहरा रिश्ता है जड़ों से, मिट्टी से और इस जिंदा विरासत से। एक ने इसे बनाया, दूसरा इसे संवार रहा है और इस तरह एक 10 साल के बच्चे की सोच आज दुनिया को सिखा रही है कि अगर जड़ें मजबूत हों तो उनसे सपनों के पुल भी बन सकते हैं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
3: पिछले 6 सालों से इस कॉलोनी से कोई भी कचरा बाहर नहीं गया। यह है साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जहां 280 घरों से रोज 300 किलो कचरा निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाता। यह बदलाव शुरू हुआ 8 साल पहले, जब डॉक्टर रूबी मखीजा RWA की सेक्रेटरी बनी। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है, इसीलिए उन्होंने सामूहिक स्तर पर बदलाव लाने पर जोर दिया। सबसे पहला कदम, हर घर को समझाना कि वे अपना कचरा खुद छांटे, यानी गीला, सूखा और हजार्डस वेस्ट। दूसरा, सफाई कर्मियों को अलग अलग

0: इकट्ठा करने के लिए मनाना। इस पहल से आज हर दिन 125 किलो गीले कचरे की खाद बनती है, जिससे कॉलोनी के बगीचे हरे भरे हो रहे हैं। वहीं सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, लोगों को बदबू का डर था। हेल्पर्स ने कहा यह हमारा काम नहीं। तब रूबी और उनकी टीम घर घर गई। उन्होंने डस्टबिन के बारे में लोगों को समझाया, इस पहल के फायदों की जानकारी दी, रोजाना अपडेट, वीडियो और सर्कुलर भेजना शुरू किया ताकि सभी लोग जुड़े रहें। धीरे धीरे यह बदलाव पूरी कॉलोनी की आदत बन गया। उन्होंने एक ट्रिपल आर सेंटर भी शुरू किया है, जहां लोग अपने पुराने कपड़े, फर्नीचर, यहां तक कि गैस सिलेंडर तक डोनेट करते हैं। इस पहल से अब तक 30 टन से ज्यादा सामान एनजीओ के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉलोनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। टैप पर पानी बचाने वाले एरिएटर लगे हैं। साथ ही यहाँ एक कम्युनिटी फ्रिज भी है, जहाँ लोग अपना बचा हुआ खाना जरूरतमंदों के लिए रखते हैं। इस कॉलोनी से अब तक 3000 किलो ई वेस्ट जमा हो चुका है, 17 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया गया है और एक भी कचरे का बैग लैंडफिल में नहीं गया। क्या आपके मोहल्ले में उठाया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा ही कोई कदम?
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 28 साल की मेहनत, एक रिटायर्ड दंपति और पक्षियों के लिए बना 6000 पेड़ों का जंगल, ये कहानी है गुजरात के दिनेश चंद्र ठाकर और उनकी पत्नी देवेंद्र बेन ठाकर की, जिन्होंने बंजर जमीन को सींचा, सालों झोपड़ी में रहे और एक पौधे से शुरुआत कर 3 एकड़ जमीन को बना दिया हरा भरा निसर्ग निकेतन। आज यहाँ 200 किस्मों के 6000 पेड़ खड़े हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के पीछे है 1984 की भीषण गर्मी और एक करूर कहानी।
2: उसी वक्त हमने कोयल, बुलबुल ऐसे छोटे मोटे पक्षी को मरते हुए देखा। पेड़ पर से गर्म तापमान के कारण नीचे गिर जाते थे। उनका दुख हम दर्द हम देख नहीं सके, तो हम दोनों ने, मेरे पति और हम दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसा निसर्ग बनाए कि जहाँ पक्षी को दाना, पानी और रहने का आश्रय मिले।
1: दोनों तब स्कूल में पढ़ाते थे और रिटायरमेंट से पहले ही प्रकृति की सेवा का फैसला कर लिया। फिर 1999 में गुजरात के धनोरा गांव में 3 एकड़ बंजर जमीन खरीदी, लेकिन यहां हरियाली फैलाने का काम आसान नहीं था, न बिजली न सुविधाएं। कई सालों तक वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे, खुद एक एक पौधा लगाते और पानी देते रहे। भीषण गर्मी में कभी पौधे सूख जाते तो कभी जानवर उन्हें खा जाते, लेकिन वे रुके नहीं, सालों तक उसी

0: जज्बे के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। धीरे धीरे बैर, इमली, कचनार जैसे देसी पेड़ बढ़ने लगे और उसके साथ ही लौटने लगे पक्षी। आज निसर्ग निकेतन मोर, तोता, बुलबुल सहित सैकड़ों पक्षियों का घर बन चुका है, जिनके लिए दिनेश भाई और देवेंद्रा बेन आज भी हर दिन 100 किलो अनाज और पानी की व्यवस्था करते हैं। इन पक्षियों के लिए ही उन्होंने निसर्ग सेवा ट्रस्ट भी बनाया है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वे गाँव में 10 और ऐसे जंगल विकसित कर रहे हैं। जिस जमीन को कभी गुजरात का मिनी रण कहा जाता था, आज लोग वहां हरियाली और पक्षी देखने आते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक मजबूत इरादे वाले दंपत्ति की बदौलत, जो आज 75 और 78 की उम्र में भी आराम करने की जगह प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। आइए उनकी सेवा और समर्पण का सम्मान करें।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब के साथ जयपुर के ये युवा कर रहे हैं शहर की ऐतिहासिक जगहों को साफ।
2: अभी तक कर्तव्य टीम ने 6000 किलो प्लस केजी का कचरा उठाया है, जिसमें से 3000 केजी प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक है। यह कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि हमारी हेरिटेज साइट्स और पब्लिक स्पेसेस को एक सांस दिलाने की एक पहल है।
1: छुट्टी के दिन जब सभी आराम कर रहे होते हैं, तब कर्तव्य टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं सफाई करने, ताकि कचरे का ढेर बन चुकी शहर की एक धरोहर फिर से जिंदा हो सके। एक साल पहले जब 3 दोस्त संदीप, मोहनीश और पुष्पेंद्र ट्रैकिंग और साइकिलिंग के लिए आसपास के पहाड़ों पर जाते थे, तब उन्हें हर बार खूबसूरती से ज्यादा कचरा दिखाई देता था। नजरअंदाज करने के बजाय उन्होंने वो कचरा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे ये छोटी सी कोशिश उनका मिशन बन गई। कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया तो कुछ ने कहा, ये सरकार का काम है, तुम नौकरी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लोगों को जागरूक करने का काम किया।
3: गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लीनिंग कर चुकी है, उसके बाद है ये कचरा, और अभी कचरा और भी है।
1: ऑफिस के लोगों को जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप और कर्तव्य टीम बनाकर हर वीकेंड युवाओं को बुलाना शुरू किया, कभी पेंटिंग वर्कशॉप तो कभी हेरिटेज वॉक का बहाना बनाकर। अपने शहर को साफ करने के लिए एक नहीं सैकड़ों युवा एकजुट हो गए।
4: इन जनों का इनिशिएटिव आज है 250 लोगों का टीम। ये इनिशिएटिव बन चुका है यूथ लेड इनिशिएटिव, जिसमें जेन ज़ी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
1: जमा किया हुआ वेस्ट वो खुद अलग करते हैं, फिर उन्हें रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका को सौंप देते हैं। आज जयपुर शहर का जल महल, पत्रिका गेट और सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ कुंड, छूटन की बावड़ी, हाथनी कुंड, झालना लेपर रिजर्व जैसे पब्लिक प्लेसेस हमेशा साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ युवा हैं जो कंप्लेन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।